0: 15 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS 5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779861616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पून को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-0.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F7

ऊर्जा भरी सुबह, सुहानी सुबह में यानी कि आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम सुहानी सुबह सिर्फ और सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड, खरा सोना पर। और आज 4 सितंबर की इस ताजा सुबह में हवा में भी एक अलग मिठास खुली है। जी हाँ, आज पूरे देश में बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पावन पर्व यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और आप सभी को इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज सुहानी सुबह में भक्ति का रंग तो घुलेगा ही, साथ ही आपकी सुबह की चाय की चुस्की के साथ हम नजर डालेंगे आज की ताजा सुर्खियों और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कान्हा के चरणों में वंदना और मैया यशोदा के वात्सल्य से भरे एक बेहद प्यारे नगमे के साथ, और इसके बाद ठीक रूबरू होते हैं आज की बड़ी खबरों से। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे कोकिला कंठ लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अमर प्रेम से। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से पिरोया था आर डी बर्मन ने। और दोस्तों इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:07:35 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो चलिए दोस्तों आज की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। 25 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 70 की स्पीड से हवा, IMD का अलर्ट। मॉनसून की रिमझिम बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मौसम विभाग ने 4 अगस्त के लिए आंधी तूफान और बारिश की डराने वाली चेतावनी भी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित पूरे 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और इसे पूरे हफ्ते उत्तर भारत में हल्के से मध्यम और काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हफ्ते के कुछ दिनों आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान है और वहीं उत्तर पूर्व में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। यहां हवाओं की रफ्तार 70 तक पहुंचने की आशंका है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसम सिस्टम के कारण उत्तर बंगाल और गंगा से सटे राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:09 यानी कि घड़ी की सुई बता रही कि वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का यानी कि एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलेगा आपके और मेरे बीच। तो दोस्तों सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम सुहानी सुबह में।

तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर रुख करते हैं कि पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में पहली बार भारत आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेयर से मुलाकात की और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण नींव बताया और कहा कि दोनों देशों ने सैन्य आदान प्रदान और प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा देने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। और दोस्तों अगली खबर जो मुझे दिख रही है कि नेपाल सीमा के करीब 55 किलोमीटर दूर तिब्बत में गुरुवार को 5 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के जोशीमठ से करीब 128 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप जमीन की सतह से काफी कम गहराई पर आया। ऐसे भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि इनकी भूकंपीय ऊर्जा सतह तक जल्दी पहुंचती है और रास्ते में कम कमजोर होती है। हालांकि फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान या लोगों के घायल होने की खबर नहीं है। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:19 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है आप सभी के साथ यानी कि ठीक सुबह के 8 तक। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए कार्यक्रम सुहानी सुबह में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों अगली खबर जो मुझे दिख रही है वो है कि मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान अब अभिनय के क्षेत्रों में भी कदम रखने जा रहे हैं। प्रभुदेवा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म मूनवॉक में रहमान एक खास कैमियो में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ये दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देंगी, जिसमें आप एआर रहमान को पहली बार अभिनय करते देखेंगे।

लेकिन दोस्तों बातों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है बिल्कुल। तो दोस्तों बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जी हाँ, अब हम लोग बढ़ेंगे कार्यक्रम की अगली ओर। तो दोस्तों अगली ओर को बढ़ने के लिए इंडोनेशिया मास्टर्स के विषय में बता दूं, जी हाँ, भारत के अनुभवी शटलर एचएस प्रणय को गुरुवार को इंडोनेशिया मास्टर्स में हार का सामना करना पड़ा और पुरुष एकल के अंतिम 16 के मुकाबले में शीर्ष वर्य प्रणय को चीन के शुआन चेन झू ने 22-20 और 21-15 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबरें यहीं तक, लेकिन बातों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा। और दोस्तों बातों का और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 8 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

उसी बड़ी ही ताजा और नशीली और मन को छू लेने वाली धुन थी। और सच कहूँ तो खिड़की से बाहर नजर दौड़ाए तो आज का मौसम भी बिल्कुल इसी नगमे की तरह अपना रंग बदल रहा है। यानी कि आज सुबह से ही बादलों की लुखा छुपी जा रही है। आसमान में छाई घटा है और हल्की हल्की बहती हवा मौसम में एक प्यारी सी ठंडक घोल रही है। और आज दिन भर की हल्की से मध्यम बारिश और फुहारों के आसार बने रहेंगे, जिसमें उमस से भी शायद राहत मिले। लेकिन अगर आज आप कहीं बाहर या फिर अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो अपने बैग में छाता रखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जब इस मधु तराने के साथ और भी जान लेते हैं कि आज का जो है मौसम कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आज जो आसमान पर आमतौर बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम गरज के साथ बौछारें एक या दो बार हो सकती है। और दोस्तों, आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और कल का जो अधिकतम तापमान नापा गया था वो था 30.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम। और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 0.4 डिग्री कम। अधिकतम आर्द्रता 99% और न्यूनतम आर्द्रता 75%। तो दोस्तों, इस मस्त मौसम और बादलों के मिजाज का मजा लीजिए और सुहानी सफर में, और माफ कीजिएगा, सुहानी सुबह के इस सफर में सफर हमारा यूं ही जारी रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: பெருமான்.
1: तो दोस्तों बात जब सुनहरे दौर और सदाबहार यादों की हो तो 4 सितंबर का दिन एक और बेहद खास वजह से हमारे दिलों के करीब है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 4 सितंबर सन 1952 को हिंदी सिनेमा के उस सदाबहार सितारे ने जन्म लिया था जिसने बॉलीवुड को रोमांस की एक नई भाषा और एक ताज़ा परिभाषा दी। जी हाँ, हम सबके प्यारे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब की आज जयंती है। फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें एक नन्हे से बालक के किरदार से शुरुआत कर नेशनल अवार्ड जीतना हो या फिर 1973 में आई फिल्म बॉबी में लाल मफलर और गिटार था में युवाओं के दिलों की धड़कन बन जाना, ऋषि कपूर ने 3 दशकों तक रोमांटिक चॉकलेटी हीरो के तौर पर एक छत्र राज किया। चाहे वे उनके रंग बिरंगे आइकॉनिक स्वेटर्स हो या फिर गिटार बजाने का वो अनोखा बेफिक्र अंदाज या फिर कर्ज, चांदनी, अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसे फिल्मों के चार्टबस्टर्स गाने, उनकी मुस्कान में हमेशा जिंदगी जिंदाबाद मुस्कुराती थी। और आगे चलकर उन्होंने 2 दिनी 4, अग्निपथ और कपूर एंड सन जैसे फिल्मों में से ये भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रोमांटिक स्टार नहीं बल्कि अभिनय के एक मंझे हुए जादूगर थे। वो आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से मौजूद ना हो लेकिन अपने किरदारों और सदाबहार नगमों के जरिए वो आज भी हमारी हर सुबह को महकाते हैं। तो आइए ऋषि कपूर साहब की जयंती पर उन्हें दिल से सलाम करते हैं और याद करते हैं उनकी उसी कभी ना भूलने वाले दिलकश अंदाज को इस गीत के द्वारा।

दोस्तों घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसी के साथ वो पल आ गया है जब मुझे आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम देना होगा। सच कहूं तो जब सुबह की शुरुआत इतनी रूहानी और सुरमई हो तो वक्त कैसे पंखला आकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों आज की ये सुबह हमारे और आपके लिए बेहद खास रही। एक तरफ जहां हमने कान्हा के जन्म उत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी

देवी के पावन पर्व पर उनकी नटखट अदाओं, माखन मिश्री की मिठास और बांसुरी की उस अमरतान को महसूस किया, वहीं दूसरी तरफ हमने याद किया हिंदी सिनेमा की उस सदाबहार और चहेते सितारे को जिन्होंने हमें प्यार करने का सलीका सिखाया, यानी कि हमारे प्यारे ऋषि कपूर साहब। दोस्तों, खिड़की से बाहर झांकिए तो आज के मौसम भी अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। बादलों की हल्की फुल्की ओट, ये ठंडी हवा और जन्माष्टमी की ये पावन बेला। उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे इस सफर ने आपकी चाय की चुस्की का स्वाद दोगुना किया होगा और आपके दिन की शुरुआत में एक नई ताजगी भर दी होगी। दोस्तों, आज दिन भर जब आप अपने रोजमर्रा के कामों में मशरूफ हो, चाहे आप दफ्तर जा रहे हो या फिर अपने घर परिवार के साथ हो या फिर शाम को बाल गोपाल के स्वागत और पूजा अर्चना की तैयारियां कर रहे हो, तो अपने चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखिएगा जो कान्हा की मुरली की धुन सुनकर अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, चलते चलते बस यही दुआ है कि आज का यह पावन दिन आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख शांति और अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, अब मैं आपकी दोस्त यानी कि ज्योति आप सभी से इजाजत चाहती है। तो दोस्तों, फिर ठीक इसी वक्त इसी मोड़ पर कुछ और ताजा खबरों, सुहाने मौसम के हाल और सदाबहार नगमों के गुलदस्ते के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपनी शो सुहानी सुबह में। तो दोस्तों, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक बेहद ही सुकून भरे तराने के साथ आप सभी को छोड़े जाती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं तो जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइए, आप यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड यानी कि खरा सोना पर। और मैं आप सभी से ठीक मिलने आऊंगी 11:10 पर, बिल्कुल कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत।

प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष V. नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की

0: पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने

0: बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends two more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:50

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा है कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास

0: गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN2.0 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 21 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश डाकोर और श्यामला जी सहित प्रमुख कृष्ण मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा और संदेश भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता भर देते हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर 2020 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said that the state of the art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has also lauded the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05. In a social media post, the minister said that with the visionary leadership

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि

0: प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. The Prime Minister said that the growing partnership between ISRO and Indian industry is adding new strength and scale to country's space program and expanding India's capabilities across the entire space ecosystem. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. Meanwhile, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also lauded the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today.
3: यशोमति मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी
1: devotees throng to the temples to offer prayers to Lord Krishna. Mathura and Vrindavan.

0: in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. 38 people were rescued after a ferry developed an engine problem in the Arabian Sea off Mumbai's Gateway of India last night. The ferry carrying 34 passengers and 4 crew members was returning from a sea excursion when it broke down around 8:30 p.m. about 1.5 nautical miles from the coast. After receiving information, police contacted boats operating in the area for assistance. In Nepal, the death toll from devastating flash floods has risen to 1,259, while more than 5,000 people remain missing more than a week after the disaster. According to Nepal police, Chitwan recorded the highest number of recovered bodies at 355, including unidentified human remains, followed by Nawalparasi East with 280 and Nawalparasi West with 212. Prime Minister Balendra Shah said the disasters linked to climate change must be strongly raised with the international community as a symbolic funeral were held by families of locals still missing. Italian Prime Minister Giorgia Meloni's government has become the longest running in Italy since the Second World War. It has broken record by lasting 1,413 days, surpassing the records set by the late Silvio Berlusconi between 2001 and 2005. Analysts say the record is likely to boost the Prime Minister's image as Italy, which has had almost 70 governments over the past 80 years, gears up for a national vote in 2027. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will take on Hong Kong's Li Chiu-Qi in men's single quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने EOS-05 वाले GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग important strategic data for our country.
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच

0: के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ब्रिक्स देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय नेपाल में बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जाँच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के अनुसार रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की नई खेप भेजी है।
3: GE एरोस्पेस द्वारा इंजनों की आपूर्ति से देश के स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन इंजनों की आपूर्ति HAL और GE एरोस्पेस के बीच वर्ष 2021 में हुए समझौते के तहत की जा रही है। इस समझौते में तेजस MK-1A के लिए 99 इंजनों की आपूर्ति शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में आए बाधाओं के कारण इंजनों की आपूर्ति में लंबे समय से देरी हो रही थी। इसके चलते कई तैयार तेजस विमानों को इंजन मिलने का इंतजार करना पड़ रहा था। नई खेप मिलने से तेजस MK-1A विमानों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्चना रंजन।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार का रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने 1,413 दिन पूरे कर पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इटली में पिछले 80 वर्षों में लगभग 70 सरकारें बन चुकी हैं और अगले वर्ष चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उनकी पार्टी की 9 फासीवादी पृष्ठभूमि को लेकर उस समय यूरोपीय देशों और निवेश बाजारों में चिंता थी। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी ने व्यवहारिक तरीके से

0: सरकार चलाई। उन्होंने यूरोपीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और वित्तीय अनुशासन पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: यमन में दक्षिण पश्चिमी ताइज प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों और हाउसी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में लगभग 25 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मारे गए लोगों में 15 सरकारी सैनिक और 10 हाउसी सदस्य शामिल हैं। संघर्ष हाउसी लड़ाकों के सरकारी ठिकानों पर बड़े हमले के बाद शुरू हुआ। हाउसी लड़ाकों ने कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सरकारी बलों ने जवाबी कार्रवाई कर उन्हें वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास पश्चिम अफ्रीकी प्रवासियों से भरी एक नाव हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी कई और लोग लापता हैं। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने बताया कि नाव में सवार 44 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बताया जा रहा है कि नाव अगस्त की शुरुआत में गाम्बिया से 127 लोगों को लेकर रवाना हुई थी। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
2: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी GEA

एरो स्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404 IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और आज मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। कुछ गाने केवल सुने नहीं जाते, बल्कि जिंदगी के किसी खूबसूरत दौर की याद बन जाते हैं। और जब बात हो उन आवाजों की जिन्होंने 90 के दशक में प्रेम, जुदाई, दोस्ती और एहसासों को अपनी आवाज दी, तो एक नाम अपने आप याद आता है, वो है कुमार सानू। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उसी सुरीली आवाज के नाम, जिसने अपनी खास गायकी से हिंदी फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। तो आइए यादों की इस महफिल को सजाते हैं कुमार सानू की आवाज के साथ।

0: आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ
1: गई। एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12

0: 12th to 13th September 2026, under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।
2: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, कुमार सानू के विषय में। आशिकी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, और क्या कहने इस आवाज के। फिल्म आशिकी ने कुमार सानू को देश भर के श्रोताओं के बीच एक बड़ी पहचान दिलाई। इस फिल्म के संगीत ने 1990 के दौर में रोमांटिक फिल्म संगीत को एक नई लोकप्रियता दी, और कुमार सानू की आवाज इस सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। तो दोस्तों, कुमार सानू का जन्म कोलकाता में हुआ, और उनका जन्म नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। संगीत से उनका जुड़ाव बचपन से रहा, और आगे चलकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया। उनकी आवाज में एक खास मिठास थी, एक ऐसी सहजता जो रोमांटिक गीतों को बहुत स्वाभाविक बना देती थी। 90 के दशक आते आते कुमार सानू की आवाज फिल्मी संगीत का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा बन चुकी थी, और फिर आया वो दौर जब लगातार कई वर्षों तक फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पुरस्कार पर कुमार सानू का नाम दर्ज हुआ।

तो दोस्तों अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म बरसात से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, और इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से पिरोया था नदीम श्रवण ने। कुमार सानू के गीतों में सिर्फ प्रेम नहीं था दोस्तों, कहीं इंतजार था तो कहीं पहली मुलाकात की खुशी, और कहीं बिछड़ने का दर्द, और कहीं किसी खास इंसान को याद करने की कसक। शायद यही वजह है कि उनके गीत आज भी सुनते ही हमें अपने जीवन के किसी पुराने पल तक ले जाते हैं। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 11:27:50 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद अपने दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला ये चलेगा ठीक दोपहर के 12 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ, यानी कि इस कार्यक्रम में लो आ गई उनकी याद में। अब दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, यानी कि छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

वस्तु फिल्म साजन के इस गीत में प्यार के साथ साथ दिल की मासूमियत भी महसूस होती है और कुमार सानू को इस गीत के लिए भी फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पुरस्कार मिला। यह उनकी लगातार दूसरी जीत थी। कुमार सानू की गायकी की खूबी यही थी कि वे रोमांटिक गीतों को बहुत सहज भाव से गाते थे। उनकी आवाज में एक नरमाहट थी जिसने उस दौर के युवा श्रोताओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बनाया था। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर अब रुख करते हैं।

संगीत बदला, संगीत की शैली बदली, रिकॉर्डिंग का तरीका बदला, नए कलाकार आए, नई आवाजें आए, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती है जिन्हें किसी एक दशक में बांधना मुश्किल होता है और कुमार सानू की आवाज भी उन्हीं में से एक है। आज भी जब भी कोई पुरानी गीत जब हम सुनते हैं तो वो सिर्फ सुनते नहीं, उस दौर में हम खो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब प्रेम को खतों में लिखा जाता था और जब गीतों को कैसेट पर रिकॉर्ड किया जाता था और जब रेडियो पर पसंदीदा गीत सुनने के लिए लोग इंतजार किया करते थे, उस दौर में हम चले जाते हैं। कुमार सानू को याद करना यानी सिर्फ कुछ गीतों को याद करना नहीं है, यह उस दौर को याद करना है जब संगीत में धुनों की अपनी एक अलग मिठास थी। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो प्रेम गीतों को और भी खूबसूरत बना देती थी, और शायद इसलिए आज भी जब कोई कहता है ना 90 के दशक के रोमांटिक गीत सुनाइए तो फिर कुमार सानू की आवाज का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिन्हें सुनने के लिए किसी खास मौसम या किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं होती, बस कोई पुराना गीत बजता है और यादों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। और आज की इस खूबसूरत संगीत यात्रा में हमने सुने कुमार सानू की आवाज़ में सजे कुछ ऐसे ही गीत जिनमें कभी प्यार की मासूमियत थी, कभी दिल की बेचैनी और कभी किसी के करीब होने का एहसास, तो कभी दूर होकर भी किसी को याद करते रहने की कसक। कुमार सानू की आवाज 90 के दशक के हिंदी फिल्मी जगत की एक खास पहचान रही। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो प्रेम गीतों को सुनते ही मन को छू जाती थी। शायद यही वजह है कि उस दौर के कई

गीत आज भी सुनाई दे तो लगता है कि जैसे कुछ वक्त पल ठहर गया हो। तो दोस्तों, याद कीजिए वो समय जब किसी गीत को बार बार सुनने के लिए कैसेट को रिवाइंड किया जाता था और जब गीतों के साथ जुड़ी यादें भी उतनी ही खूबसूरत हुआ करती थी। आज तकनीक बदल गई है, संगीत सुनने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन अच्छी आवाज़ और अच्छे गीतों की खूबसूरती आज भी वही है। और कुमार सानू के गीत भी हमें यही एहसास दिलाते हैं कि कुछ नगमे सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की महफिल को यही विराम देते हैं, लेकिन यादों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ गीत पीछे छूटे हुए पलों को फिर से हमारे पास ले आते हैं, और शायद इसीलिए लो आ जाती है उनकी याद में। जी हाँ, जब कोई पुराना नगमा दिल के करीब से गुजरता है तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे, फिर सजाएंगे यादों की महफिल और फिर सुनेंगे कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमे। तो दोस्तों, तब तक अपने पसंदीदा गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी खूबसूरत यादों को हमेशा दिल के करीब रखिए, क्योंकि आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोहा गई थी उनकी याद। और दोस्तों, इस गीत के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। मैं चाह रही हूँ आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने

भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রধান বিচারপতি ফোরামের বৈঠক আজ নতুন দিল্লিতে শুরু হয়েছে। আজ জন্মাষ্টমী, দেশ জুড়ে যথোচিত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দিনটি পালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নিউটাউনে প্রস্তাবিত উত্তম কুমারের নামাঙ্কিত ফিল্ম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তম কুমারের অবদান অক্ষয়, অমর ও চিরস্মরণীয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। খবর এখনকার মতো এখানেই শেষ হলো।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार।

मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरा से पूर्व में 218, नवलपरा से पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
6: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRHindiNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
7: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
8: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस सफलता पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने

0: जी एस एल बी।
1: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जी एस एल बी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
3: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
4: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मोसेन से होगा। इस मैच के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के बाद किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

0: GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।

0: मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों की मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा हुई। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगा और बरमूडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम स्टुअर्ट और एंडर्स स्कारूप रमसेन से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्या सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व्स 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ भी करेंगे। पूर्वोत्तर में सीमा पार से होने वाली कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की अगरतला क्षेत्रीय इकाई ने लगभग 17,84,00,000 रुपए मूल्य की करीब 22 किलो मेटमेफेटाइन माइन की गोलियां जब्त की हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में 2 अलग अलग अभियानों में म्यांमा के एक नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स का रूप रसमुवना से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग की ली चेक्यू से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में पिकलबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगुआ, बरबुड़ा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV-F17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organisation has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV-F17 rocket from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan has congratulated scientists and engineers of Indian Space Research Organization, ISRO, on the successful launch of the imaging satellite from Sriharikota today. In a social media post, the Vice President said that the successful injection of India's first ever imaging satellite, EOS-05, from the geosynchronous orbit is a significant milestone in the country's space journey. The BRICS Chief Justices Forum is underway in New Delhi from today, bringing together Chief Justices, Presidents of Supreme Court and Senior Judicial Representatives from BRICS member states and partner countries.

0: marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर FM गोल्ड पर
2: जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड पर हमारा सबसे प्यारा शो चाय और क्लासिक, जिसमें मैं बोल रही हूँ आज रिंकू। लेकिन दोस्तों आज है जन्माष्टमी, जैसा कि आप जानते हैं जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर हम सभी का ध्यान बटाने के लिए हमने आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। जी हाँ, एक भेंट वार्ता जिसमें भेंट करता है पापिया भट्टाचार्य और हमारे अतिथि है कुशल बिहारी दास जी। दोस्तों प्रस्तुत करता है दीपक कुमार मित्रा, रिकॉर्डिंग की है नुपुर तिवारी ने और संपादन है अर्क प्रभा चक्रवर्ती की। तो आइए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जन्म की पावन कथा, संस्कृति आस्था और संदेश की कथा आइए सुनते हैं।
3: दोस्तों श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें बचपन की शरारत भी है, दोस्ती की मिठास भी, प्रेम की गहराई भी है और जीवन को समझने का अद्भुत दर्शन भी। कभी नटखट कान्हा, कभी सुदामा के सच्चे मित्र और कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल बाद भी श्री कृष्ण आज के युवा वर्ग से इतना गहरा कनेक्शन कैसे बनाए हुए हैं? उनकी लीलाओं और उनके जीवन से आज की यंग जनरेशन को क्या सीखने को मिलती है? जन्माष्टमी के खास मौके पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री कुशल बिहारी दास जी। पिछले कई वर्षों से स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे कुशल बिहारी दास जी ने हमारे यंग जनरेशन को स्पिरिचुअल और एकेडमिक लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने देश के कई प्रमुख इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में सेमिनार्स के जरिए युवाओं से संवाद किया और श्री कृष्ण और भगवद गीता के संदेश को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। वो राधा कृष्ण से जुड़े भजनों के रचयिता और कवि भी हैं। कुशल बिहारी दास जी, जन्माष्टमी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद पापे जी, हरे कृष्णा। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम अपने गुरु एंड भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस प्रेयर की वजह से हमारा जो स्टूडियो है, स्टूडियो का एनवायरमेंट, स्टूडियो का परिवेश भक्तिमय बन गया है और काफी पॉजिटिविटी फील हो रहा है। तो चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं
4: जी।
3: श्री कृष्ण को हम एक ही रूप में नहीं देख सकते, वो कभी नटखट बालक है, कभी एक सच्चे दोस्त, कभी प्रेम का प्रतीक और कभी एक महान मार्गदर्शक। आप श्री कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं?
4: देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शब्द की परिभाषा दी गई है, महर्षि पाराशर ने दी है, जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो षड ऐश्वर्य होते हैं ऑल ब्यूटीफुल जो सबसे सुंदर हैं, ऑल पावरफुल जो सबसे शक्तिशाली हैं, ऑल रिच जो सबसे धनवान हैं, जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जो पूरी तरह त्याग से भी भरे हुए हैं, ऑल रिनाउंस। तो ये छह षड ऐश्वर्य जिसके भी अंदर होते हैं वे सभी के लिए आकर्षक बन जाते। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए, क्योंकि वे षड ऐश्वर्य से और 64 कलाओं से, आपने सुना होगा भगवान की 64 कलाएं हैं, इसलिए वे सभी के लिए आकर्षक हैं। और कृष्ण शब्द का अर्थ ही श्रील प्रभुपाद जी बताते थे ऑल अट्रैक्टिव, मतलब जो सभी के लिए आकर्षक हैं, ये भगवान की परिभाषा है। तो भगवान तो सबके लिए आकर्षक होने ही चाहिए, तो इसीलिए कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। आप अगर वृंदावन में देखेंगे, भगवान उनका एक छोटा सा बंदर है उसको दधी लोक कहते हैं, तो वो भी उनसे प्रेम करता है। उनकी 9 लाख गायें हैं वो भी उनसे प्रेम करती हैं, और सभी जो वृंदावन के

0: आसी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और इस संसार में भी प्रत्येक जीवात्मा आप देखेंगे कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ी हुई है। भले ही कुछ लोग अभी ना जानते हो कि वो भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु हम सब भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश हैं इस जीवलोक में सभी लोग, सभी आत्माएं, और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हमारे लिए उनसे आकर्षित होना स्वाभाविक है।
1: और शायद इसीलिए श्री कृष्ण हर उम्र और हर पीढ़ी के लोगों को अपने अपने तरीके से कनेक्ट करवाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसी बात पर उनकी बाल लीलाओं की तरफ जाते हैं सीधे। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हम सब बचपन से सुनते आए हैं, उनकी नटखट शरारतें, उनकी मुस्कान और उनका अनोखा अंदाज। इन बाल लीलाओं के पीछे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कोई गहरा जीवन संदेश भी छुपा है।
0: तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे सभी प्रकार की शरारतें करते हैं, छोटे बच्चों की लीलाओं से केवल उनके परिवार वाले या लोग प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो भी बालक रूप में छोटे स्वरूप में, वो सभी लीलाएं सभी के लिए बड़ी आकर्षक है और वहां से कुछ न कुछ संदेश हमें मिलता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में प्रतिदिन एक एक राक्षस आता था और भगवान उन सभी का संहार करते थे, और सबसे खास बात है कि भगवान उसके लिए किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए, भगवान अपने हाथों से ही मारे। जैसे आपको कथा पता होगी पूतना की, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी और अपने स्तन में विष लगाकर आई थी भगवान को। भगवान 3 दिन के थे किंतु भगवान ने पूतना की इस हत्या करने की भावना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसमें मातृत्व की भावना को स्वीकार किया। वो एक माँ बन के मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने उनका उद्धार किया, उनके प्राण ले लिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि उन्हें अपने धाम में गोलोक वृंदावन धाम, जिसे हम भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आध्यात्मिक संसार कहते हैं, वहां पर उन्हें आया का स्थान दिया। तो यहाँ आप देखिए कि भगवान का एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है कि भगवान आपकी प्रत्येक भावना को स्वीकार करते हैं। भगवान को परम सत्य कहा जाता है। परम सत्य का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार से अगर उनसे संबंध बनाएंगे, भले ही उनसे ईर्ष्या का भी संबंध बनाएंगे, अगर उनसे द्वेष रखने का भी संबंध बनाएंगे, भगवान उसको भी आनंद के साथ स्वीकार करते हैं और उस जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे शिशुपाल जो भगवान को गालियां देता था, 100 गाली देने के बाद भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी, किंतु उसकी आत्मा तुरंत निकल के भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो भगवान के साथ जो भी संबंध बनाता है उसको भगवान अवश्य आनंद, सच्चिदानंद भगवान उसको प्रदान करते हैं, अपने धाम में जगह प्रदान करते हैं। उनके साथ अनेक प्रकार से संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके जीवन में बहुत सारे संबंध है, आपके माता पिता के साथ आपका वात्सल्य रस में संबंध है, आपके मित्रों के साथ साख्य रस में संबंध है, और आपके जो और लोग होंगे दास्य रस में आपके साथ संबंध रखते हैं, शांत रस में संबंध रखते हैं, पति पत्नी जो होते हैं वो आपसे माधुर्य रस में संबंध रखते हैं। तो ये जो संबंध है ये आपको इस संसार में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान से भी शाश्वत संबंध बनाए जा सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है। तो भगवान की हर लीला में आपको कोई ना कोई संबंध मिलेगा जो उनके भक्त उनके साथ बनाते हैं। तो सबसे बचपन की सभी लीलाओं में आप जनरली देखेंगे उनके साख्य रस के बहुत सारे संबंध आपको दिखाई देंगे, उनके माधुर्य रस के गोपियों के साथ संबंध दिखाई देंगे, उनके वात्सल्य रस में भी उनके संबंध दिखाई देंगे। तो भगवान अपनी लीलाओं से इसी प्रकार से हमें कहते हैं कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए, मेरे साथ मित्रता कीजिए, मेरे साथ किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बनाइए, मेरे पास आइए।
1: और कृष्णा की जब बातें हो रही है, उनके बचपन की बातें हो रही है, तो सुदामा को हम अलग नहीं रख सकते हैं
0: जी।
1: तो अगर दोस्ती की बात हो तो कृष्णा और सुदामा की मित्रता का जिक्र जरूर होता है। तो आज के सोशल मीडिया और कन्वीनियंस वाले रिलेशनशिप्स के दौर में कृष्णा सुदामा की दोस्ती हमें क्या सिखाती है?
0: देखिए कृष्णा सुदामा की जो दोस्ती है वो बहुत विशेष मित्रता है, क्योंकि इस संसार में भी हम देखते हैं मित्रताएं हम सभी करते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, किंतु एक कहानी आती है, जैसे एक मित्रता आपने देखी द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अस्वीकार कर दिया जब द्रोणाचार्य उनके पास गए, क्योंकि दोनों साथ में पढ़े थे और जब पढ़ रहे थे अपने गुरु के आश्रम में, तो द्रुपद ने उनसे यह वादा किया था कि आपको मैं जब राजा बनूंगा तो आधा साम्राज्य प्रदान कर दूंगा, लेकिन जब द्रोणाचार्य आए तो उन्होंने अपमानित करके उनको निकाल दिया। लेकिन वहीं आप अगर कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखेंगे, कृष्ण के लिए सुदामा सबसे निकट के प्रेमी आप कह सकते हैं, इतने निकट के उनके संबंध थे, और वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन जब वे भगवान से मिलने आए तो भगवान दौड़ के उनसे मिलने के लिए गए, यद्यपि वो द्वारकाधीश हैं और सुदामा कौन है, एक गरीब ब्राह्मण जिसकी धोती भी फटी हुई है, जो एक भजन हम लोग का बहुत फेमस भजन है कि उनके दर पे सुदामा आए हैं और भगवान दौड़ के जाते हैं सुदामा से मिलने के लिए। तो भगवान ये भेद नहीं करते कि ये

0: मेरा जो मित्र है वो गरीब है, अमीर है, भगवान सभी प्रकार की मित्रताओं में सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो हम यही सीख सकते हैं कि यदि आप मित्र बनाएं तो असली मित्र की क्या पहचान है, वे कभी भी आपके बाह्य जो आपकी परिस्थिति है उसे देखकर दोस्ती नहीं करते। आपके मित्र हमेशा आपके भीतर देखकर आपसे दोस्ती
1: जी
0: करेंगे।
1: बिल्कुल, सच्चा रिश्ता तो वही होता है जो वक्त और पैसा ना देखे बल्कि दिल से जुड़े, जैसा कि सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती
0: मित्रता।
1: थी। बिल्कुल, तो अब लीलाओं की बातें हो गई हैं। श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ खुशियों और लीलाओं से भरा हुआ नहीं था, उनके जीवन में भी कई कठिन परिस्थितियां आई हैं, फिर भी उनका जीवन संतुलन और मुस्कान का संदेश देता है। आज के इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए?
0: कृष्ण के जीवन में देखें तो उनका जन्म ही जेल में हुआ था, और जैसे ही उनका जन्म हुआ तुरंत उनको पिता उठा के ले गए, माँ बाप से दूर हो गए और उन्हें गोकुल में पहुंचा दिया, नंद बाबा और यशोदा माँ के पास। उसके बाद आप देखेंगे कि वो कुछ वर्ष वृंदावन में रहे और इसके बाद फिर मथुरा चले गए। जो उनके प्रिय मित्र थे, सखा थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, राधा थी, इन सभी के साथ बहुत प्रेम था उनको, लेकिन उन सबको छोड़ के उनको जाना पड़ा। उसके बाद मथुरा से भी उनको जाना पड़ा क्योंकि वहां जरासंध आक्रमण करता रहता था, 17 बार उसने आक्रमण किया। मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए भगवान सबको ओवरनाइट शिफ्ट करके द्वारका ले गए, और द्वारका में भी भगवान जब सोते थे तो द्वारका की रानियां आश्चर्य में पड़ जाती थी कि भगवान सोते समय गोपियों को याद करते थे स्वप्न में। हमारा जो स्वप्न है वो हमारी चेतना का दर्पण होता है, तो जो आपकी जैसी चेतना है वैसे ही स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान की चेतना में वास्तव में वृंदावन था, किंतु वो वृंदावन कभी लौट नहीं पाए। तो उनके लिए अगर हम उनके स्थान पर खुद को रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये बहुत कष्टप्रद होगा हमारे लिए कि जिसको भी आपने प्रेम किया वो आपसे छूट गया। तो भगवान का जीवन हम देख सकते हैं बहुत टफ लगता है देखने, किंतु भगवान फिर भी कभी दुखी नहीं रहते हैं क्योंकि वह अखिल रसामृत मूर्ति हैं और रस सागर हैं, रस निधि हैं, भगवान सभी रसों के सागर हैं। तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान के जीवन को देख के प्रत्येक व्यक्ति यह सीख सकता है कि भगवान के जीवन में भी इतनी परेशानियां आई तो मेरा जीवन, तो मैं तो क्या हूं, कौन हूं भगवान के सामने। तो मैं हमेशा उत्साहित रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा कि भगवान ने भी तो बहुत परिस्थितियां झेली थी, क्या मैं इतनी छोटी मोटी परिस्थितियां नहीं झेल सकता। तो ये हम सीख सकते हैं भगवान के जीवन से।
1: यहीं से कुशल जी अब हम चलेंगे युद्ध की ओर। भगवत गीता में अर्जुन भी एक समय गहरे संशय और भ्रम की स्थिति में थे, युद्ध जब कर रहे थे महाभारत के युद्ध में। तो क्या आज जीवन में आने वाली उलझने और निर्णयों को अर्जुन की उस स्थिति से जोड़कर समझा जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, अर्जुन बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, संसार में उनसे अधिक बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, किंतु वो महान वीर योद्धा भी जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में पहुंचा, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो, और कृष्ण जो उनके सारथी थे वो उनके रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले गए। वहां जाकर वह देख रहे थे कि कौन है जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो बचपन में खेले थे, वो उनके सामने खड़े थे युद्ध के लिए। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, वो उनके सामने खड़े थे। कृपाचार्य, जो उनके कुलगुरु थे, वो उनके सामने खड़े थे। दुर्योधन और करीब सभी भाई, वो सब उनके सामने खड़े थे। तो अर्जुन उस समय असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि मैं इन लोगों को मारकर मैं क्या ही सुख प्राप्त कर लूंगा। अगर मुझे पूरा साम्राज्य भी मिल जाता है लेकिन मुझे प्रेम करने वाले लोग ही नहीं रहे तो मैं किस प्रकार से खुश रह सकता हूं। और वो ये भी सोच रहे थे कि ये लोग, इनसे मैं इतना प्रेम करता हूं, ये मुझे मारने के लिए आए हैं, युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन घबरा गए, उनका कंठ सूखने लगा, उनके जो गांडीव था उनके हाथ से छूटने लगा, और वो दुविधा में पड़ गए कि वास्तव में क्या करना चाहिए। वो तो सोचने लगे कि मैं जाकर संन्यास ले लेता हूं, मैं क्यों युद्ध करूं। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं ना, गीता मत पढ़ना, गीता पढ़ने से आप सब कुछ छोड़ दोगे। अरे अर्जुन तो छोड़ना ही चाहते थे, किंतु भगवान ने गीता सुना के उनको युद्ध में लगाया। तो अर्जुन की तरह हम भी इसी एक युद्ध क्षेत्र में है। हर व्यक्ति का एक अपना युद्ध क्षेत्र है, अलग अलग परिस्थितियों में कोई ना कोई कारण से किसी न किसी तरीके से व्यक्ति लड़ रहा है। तो अर्जुन के जीवन से हम सीख सकते हैं और कृष्ण की शिक्षाओं से हम सीख सकते हैं कि चाहे जितनी भी परिस्थिति हो, हमें भागना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, हमें डट कर सामना करना चाहिए। और जब गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। भगवान ने सबके लिए बनाया है रास्ता। आप गीता पढ़िए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है।
1: गीता पढ़ने पर हर प्रश्न का, हर उलझनों का उत्तर
0: मिल सकता है। तो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी है, आप गीता जी से पूछिए, गीता पढ़िए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो अर्जुन की तरह हम भी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और अर्जुन की तरह हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए।
1: यहीं पे अगला सवाल मेरा आता है, श्री कृष्ण की सीख की बात हो और कर्मा की बात का जिक्र ना हो तो ये नहीं हो सकता। आज के कॉम्पिटेटिव जमाने में अपना कर्म करो वाले संदेश को हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझ सकते हैं?
0: देखिए, भगवद गीता का जो श्लोक है इससे संबंधित वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कर्म पर हमारा अधिकार है किंतु फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल पर भगवान का अधिकार है। तो हम कर्म करते हैं और फल भगवान देते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कर्म जो करना है वो कैसा कर्म करना है। कर्म करना, गीता से जो शिक्षा मिलती है, भगवान ये कह रहे हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब मुझको अर्पित करके कीजिए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति जो किसी 9 to 5 वाली जॉब में है, सुबह तैयार होता है, जॉब के लिए जाता है, हम और आप जैसे आते हैं अपने अपने कंपनीज में काम करते हैं, तो क्या हम भी कर्मयोग कर सकते हैं? क्या हम भी भक्ति योग कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित कीजिए। और भगवान को किस प्रकार से समर्पित करेंगे तो आप देखिए कि कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है, हम कुछ भी अगर कमाते हैं, हम कुछ धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, तो उसका कुछ अंश हमें दान में अवश्य देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो भी करते हैं उसको भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे यदि आप एक अच्छे सिंगर हैं, अच्छे गायक हैं, गा सकते हैं, तो आप भगवान के भजन गाइए, भगवान का प्रेम सभी तक पहुंचाइए। आप अगर अच्छे वक्ता हैं तो आप लोगों को बताइए कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, उनसे प्रेम कीजिए। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो भगवान के चित्र बनाइए। तो आप अपने हर कार्य को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कर्म योग जो है, एक है साधारण कुछ भी कर्म करना, लेकिन वह कर्म योग बन जाता है यदि आप उसके फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, या उस कर्म को इस प्रकार मोड़ देते हैं कि वो भगवान की सेवा के लिए हो। आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों के और अपने पत्नी के साथ हैं, तो आप उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाइए कि वे भी भगवान की ओर आगे बढ़ें। एक आप शिक्षक हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को भी आप ऐसे मार्गदर्शन कीजिए कि वे भी भगवान की तरफ बढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपका हर कार्य एक कर्मयोग बन जाएगा, आप भगवान के करीब जाएंगे और आप दूसरों को भी उनके करीब लेके आएंगे।
1: आजकल एक चीज देखने को मिल रही है कि युवा वर्ग में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके प्रति एक अलग अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से आज की युवा वर्ग श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति और अट्रैक्शन क्यों महसूस करती है?
0: जेन जी कहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग थोड़ा सा पहले जनरेशन के, इतने भी लेकिन बुढ़े नहीं है, बट यस, जो अभी जेन जी है वो बहुत ही उत्साहित है भगवान से जुड़ने के लिए। और अभी हाल के समय में हमने देखा है, हम कभी कभी भजन जैमिंग करते हैं और भजन जैमिंग में जो युवा हैं बहुत उत्साह के साथ आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और मैंने देखा है कि वे जानना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वे जानना चाहते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, वे प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, शास्त्र क्या है, शास्त्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। तो आज का युवा मैं देखता हूँ कि अपने जीवन से परे के प्रश्न पूछ रहा है, जीवन के बाद क्या, जीवन के पहले क्या था, ये प्रश्न के उत्तर आपको साधारण अपने स्कूल की किताबों में नहीं मिलेंगे। आप जब गीता खोलेंगे, भागवत खोलेंगे, तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर, विशेष रूप से जो कोविड का समय था उसमें, क्योंकि लोगों ने देखा कि यह संसार पूरा नश्वर है, क्षणभंगुर जीवन है, हम सभी के परिवार में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई उस समय, तो लोग तुरंत ही आकर्षित हुए, यह तुरंत जानना चाह रहे थे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या मैं टेम्पररी, मैं जस्ट पैदा हुआ, कुछ मैंने परिवार चलाया, जॉब की, पैसा कमाया, बुढ़ा हुआ, मर गया, क्या यही है केवल जीवन का सार? तो कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए, कुछ तो परमानेंट होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ये तो सब टेम्पररी लगता है, सब कभी भी खत्म हो सकता है, तो वो परमानेंट ढूंढने के लिए आज के युवा आ रहे हैं, जिससे उनको वास्तविक खुशी मिल सके, आनंद मिल सके।
1: तो ऐसे में तो आजकल की जेनरेशन को करियर प्रेशर, कॉम्पिटिशन, रिलेशनशिप में कॉम्पिटिशन कह लीजिए, चाहे करियर का कॉम्पिटिशन कह लीजिए, या फिर मेंटल स्ट्रेस, ये सबसे जूझ ही रही है आज की जेनरेशन। तो ऐसे में श्री कृष्ण के जीवन और उनके विचारों से हमारे जो युवा वर्ग है उनको क्या सीख मिल सकती है?
0: आज बहुत प्रेशर का समय है, कंपटीशन हर जगह है। हम तो कहते हैं कि भारत जो है बिल्कुल प्रेशर कुकर हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ना, तैयारी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करवाते हैं सबको, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सबको कुछ करना है। तो भारत जो है पूरा प्रेशर कुकर की तरह हो गया है और इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और ये भी एक एक्चुअली महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से युवा वर्ग आ रहा है इस ओर, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका भी स्ट्रेस कम हो और जो टेंशन, डिप्रेशन, ये सब केसेस है ना, इन सब से छुटकारा मिले हमारी सोसाइटी को। और भगवान कृष्ण के संदेश की जहां तक बात है तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी मुश्किलों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक जीवात्मा को यह समझना चाहिए कि भगवान हैं मेरी रक्षा के लिए, भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो अगर परिस्थितियां खराब भी होती हैं जीवन में, तो भी जीवन में किसी भी गलत निर्णय लेने से पहले ये संदेश देखना चाहिए, भगवद गीता देखनी चाहिए, भागवत पुराण देखना चाहिए, और वहां से समझना चाहिए वास्तव में ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो किसी को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नकारात्मक विचारों की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए भगवान आए हैं, मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल आपको ये बताता है कि ये वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है,
1: कैसे मेंटेन करना है,
0: इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है। इसी प्रकार से भगवद गीता और हमारे वेद शास्त्र ये हमारे जीवन का मैनुअल है, जो आपको बताते हैं कि कैसे अपने जीवन को चलाना है। तो इसी से हम सीख सकते हैं, यही भगवद गीता का सार है, यही भगवान का संदेश है।
1: कुशल जी, प्रोग्राम के अंत में एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से एक ऐसा संदेश चुनना हो जो हमारे हर श्रोता अपनी जिंदगी में लेकर जा सकते हैं, तो वो संदेश क्या होगा?
0: एक ऐसा संदेश जिसको हर जीवात्मा अपना सकती है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो भगवान यही चाहते हैं कि प्रेम बढ़े समाज में, इस समाज में सौहार्द बढ़े, हम दूसरे के दर्द को भी समझें, दूसरे के कष्टों को भी समझें, और दूसरे के परिस्थिति को समझकर हम उनके साथ व्यवहार करें। तभी हमारा समाज, जो हम एक कहते हैं ना राम राज्य कैसे बन सकता है? तभी बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कष्ट को समझेगा, दूसरे की भावनाओं को समझेगा। और भगवान यही प्रेम का संदेश देने के लिए आए थे कि आप प्रत्येक जीवात्मा आपस में प्रेम कीजिए, आप सभी मेरे अंश हो, और मुझसे भी प्रेम कीजिए, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे भी प्रेम कीजिए। यही जन्माष्टमी का संदेश है, कृष्ण आ रहे हैं आप सबसे प्रेम करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन हम जिस दिन उनके लिए हृदय का दरवाजा खोल देंगे, उस दिन वो हमारे हृदय में
1: हमेशा
0: प्रवेश कर जाएंगे, हमेशा के लिए, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमें यही संदेश लेना है, प्रेम करना है सबको।
1: बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक बातचीत रही हमारी आज की। कुशल जी, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने और श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके संदेश को इतने सरल और सुंदर तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, हरे कृष्णा।
1: दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपना कर्म करते रहना चाहिए, रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए, और हर मुश्किल का सामना मुस्कान और विवेक के साथ करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पापी और लेती हूं आप सभी से इजाजत। नमस्कार।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कृष्ण जन्म की पावन कथा, संस्कृति, आस्था और संदेश पर विशेष कार्यक्रम जन्माष्टमी, जिसमें हमारी बातचीत कर रही थी पापिया भट्टाचार्य, जो कि आज की भेंटकर्ता थी, और हमारे विशेष अतिथि थे कुशल बिहारी दास जी। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार मित्रा, रिकॉर्डिंग किया था नुपुर तिवारी ने और संपादन किया था अर्क प्रभा चक्रवर्ती ने। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
3: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम विषय लेके आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

0: दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेतीबाड़ी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। सालाना 6,000 की मदद योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल कुल 6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि एक साथ न देकर 2,000-2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीनों पर दी जाती है। ये राशि किसी बिचौलियों के बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना के लिए कौन से पात्र उपयुक्त है ये भी आपको जान लेना आवश्यक है। देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए ये भी आपको जानना आवश्यक है। यदि कोई किसान इस योजना में नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। आधार कार्ड, जो सबसे जरूरी है, भूमि के कागजात यानी कि खसरा, खतौनी या फिर जमाबंदी जैसे कागज, बैंक द्वारा या फिर बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक होने चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। किसान भाई, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प के जरिए खुद आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या फिर वसुधा केंद्र पर जाकर भी फॉर्म भराया जा सकता है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: ये दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे परियोजना प्रस्तुति, जिसमें हम बात कर रहे थे किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। लेकिन यह है शो चाय और क्लासिक्स का और आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड आरजे रिंकू के साथ। तो आइए शुरू करते हैं चाय और क्लासिक्स गीत।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
0: जी दोस्तों, चाय और क्लासिक्स में सबसे पहले किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी के गीत अभी मेरे साथ पे हैं और सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी को फिल्म आपकी कसम से। वैसे चाय और क्लासिक्स का सोच चल रहा है और चाय और क्लासिक्स बिना रोमांटिक या फिर हमारे पुराने गीतों के पूरी नहीं हो सकती। तो आइए किशोर कुमार की आवाज में एक और गीत हमारे तुम्हारे और सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म याराना से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। दोस्तों क्लासिक्स चाय और क्लासिक्स का शो चल रहा है और किसी भी बातों की बिल्कुल भी खलल ना होने गुंजाइश की बात है। आइए एक और गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। उसके बाद हम सुनेंगे कुछ खबरें और उसके बाद फिर हम आएंगे लौट कर और सुनाएंगे फिर चाय और क्लासिक्स। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म तीसरी मंजिल से।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था आर डी बर्मन में। दोस्तों शुरू की घड़ी में इस वक्त 5:59:17 हो चुके हैं और चाय क्लासेस का शो जारी रहेगा कुछ खबरों के बाद। आइए सुनते हैं कुछ खबरें।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष

कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने एक एक गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan has also congratulated scientists and engineers of ISRO on the successful launch of GSLV F-17 EOS-05 mission from Sriharikota. He called it a remarkable achievement for India's space program. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Discussions were held for strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration, for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial process and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,282. According to Nepal police, the highest number of fatalities

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये फिल्म फर्ज से, जिसके गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये गीत सच में चाय की चुस्की हो या फिर हो 100.1 एफएम गोल्ड का साजो, दिल में धड़कता हुआ कोई प्यारा सा साज, दोनों में ही भीगी आंखों में जो हमारे खुशबू है, हमारे प्यार का जो संगीत है वो छलक ही पड़ता है। तो आइए चार क्लासिक शो को बहुत ही और भी तरीके से बेकरार करते हैं और सुनते हैं हमारा फेवरेट शो चाय और क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लास

के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible.

0: This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर
2: जी हाँ दोस्तों, वक्त रेत की तरह फिसल जाता है और जब ये महफिल प्यार भरे नगमों की हमारी चाय और क्लासिक्स के सिलसिला में फिर से हम आएंगे। सुइयां इशारा कर रही है अभी जाने के लिए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि प्यार भरे नगमों का ये सिलसिला कल फिर मुस्कुराएगा और 100.1 FM गोल्ड में भीगी आंखों को मुस्कान देकर हम आज तो अलविदा कहते हैं, लेकिन फिर हम जरूर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ आपके लिए ये गीत छोड़ जा रही हूँ, जीत के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, सुनिए और सुनते रहिए।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी का स्वागत है कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम आगे और बात करें, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: The benchmark domestic indices rebound. Sensex adds over 350 points. Nifty settles at nearly 23,900. India's foreign exchange reserves surged to a record high of over $740 billion last week. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 350 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 23,900 के आसपास बंद हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह 740 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक में आज तेजी लौटी और लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 363 अंक यानी आधा प्रतिशत की तेजी के साथ 76,515 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक यानी 0.1% ऊपर आकर 23,898 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिडकैप सूचकांक 0.2% नीचे आ गया, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बाजार में गैप अप से शुरुआत हुई। दोनों मुख्य सूचकांक पूरे सत्र के दौरान बढ़त के साथ और एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद इंडेक्स की बढ़त में कुछ कमी भी देखी गई।
0: The benchmark domestic equity indices rebounded today, snapping a four-session losing streak. The Sensex climbed 300.

0: 163 points, or 0.5%, to close at 76,515, while the Nifty added 24 points, or 0.1%, to settle at 23,898. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell 0.2%, while the Nifty Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues. Both the benchmark indices remained in the green throughout the session, trading within a narrow range. However, following the closing auction session, the indices paired some of the gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों में टाटा स्टील 2.9%, रिलायंस 1.6% और बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर चढ़े। इसके उलट भारतीय एयरटेल, HCL टेक में 1.2% और एटर्नल में 1.1%, वहीं एशियन पेंट्स में 0.5% की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of 28 sectors edged upwards. Among the top performers, housing finance, metal, telecommunications and insurance rose 1.4%, commodities and financial services gained 0.6%, and private banks index added 0.5%. In contrast, realty and capital goods declined 0.7%, healthcare fell 0.5%, and hospitals lost 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,388 companies advanced, 1,991 declined, and 239 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में बिना किसी बदलाव के ₹94.49 पर बंद हुआ। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: सुषमा जी, आज घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक तेजी दिखाते हुए बंद हुए, चार दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा और ठीक ठाक हमें बढ़त इसमें आज मार्केट में देखने को मिली है, और गैप अप के साथ में मार्केट आज खुला था और पूरे सत्र के दौरान एक अच्छा कारोबार देखने को मिला है। तो ये जो अंतिम दिन था आज कारोबार का, इसे सकारात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि थोड़े से लाभ के साथ बंद हुआ, या फिर जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उन्हें समेटने का ये प्रयास है?
2: हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी तरह इसको सारा डिस्क्राइब कर दिया है, जो सिनेरियो है स्टॉक मार्केट्स में। हालांकि ये मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट्स का एक जो पॉजिटिव इंडिकेटर जो फीलिंग है कि भाई यूएस का जो फेड, यूएस फेड का जो रेट कट है, रेट हाइक अभी नहीं होने जा रहा है, और क्योंकि इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो दिखाई दे रहे कि अगस्त में इंडिकेटर्स कम हो रहे हैं, तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव हिंट आ रहा है अमेरिका से। और बाकी जो ग्लोबल क्यूज हैं उसकी ये हैं कि भाई बाकी स्टॉक मार्केट्स भी ज़रा अच्छे से इक्विलिब्रियम में चल रही हैं, और हमारा डोमेस्टिक डेटा जो है, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे आए हैं। हमारा जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट है, हालांकि इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इतनी सप्लाई साइड इश्यूज हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
0: सुषमा जी, यू टॉक्ड अबाउट द जियोपॉलिटिकल factors, and of course, you know, the Fed kind of at the moment kind of, you know, betting the rate hike. But let us come back to the other side. Today we saw the both the indices rather gaining almost 0.5%. Now, can we say that this is just a flash in the spanner, or is it? Why I'm asking this, because FIIs and FPIs are mostly, they are, you know, they're inward flowing after a long, long time.
2: Yes.
0: And yet, you know, over the past, if we look at the past maybe 8 to 10 sessions, you know, the indices have not been doing that great.
2: Yes.
0: Of course, barring today.
2: Yes.
0: So how do you see that?
2: Well, I think you won't call it a flash in the pan, but at the same time, I don't think we can expect a great deal of upside in the coming days, because first of all, because the geopolitical tensions, which we thought were going to calm down, I mean, for the last 2 months we've been hearing from the US and from Iran that this whole conflict is going to die down, and even people who make predictions, they had also forecast, you know, by end of August everything is going to be over, but that conflict area, which is a very major conflict area, remains. So that I think is going to have its repercussions. We don't talk much about the Ukraine war, but that is also still going on. We don't talk much right now about what is happening in Israel, you know, that is also an issue between Israel and Iran. So that all these

0: these conflict areas are going on. Mm. And the net result, of course, is that crude oil prices, which had come down with the anticipation that the that this particular war is going to end finally, they had gone down to about $70-$75, is now come back up to over $90. So this, and that, of course, has its, again, its ripple effects on the entire global economy. So although it is a very positive sign, FPIs as, and FIIs, as you said, we have seen inflows lately, this is this today, of course, there is an upside, but I think we have to be prepared for more volatility in the days to come, because no doubt the external headwinds will have an impact on the stock market.
1: Right. Talking of headwinds, Sushma ji, again talking of FPIs and FIIs, what factor would you attribute to these two kind of giants, FPIs and FIIs, coming back to the Indian markets?
0: Well, I think one, of course, the major one was the RBI scheme, the FCNRB deposit swap, which facility which they provided.
1: Right.
0: And that gave a great comfort level. That, I think, is the number one reason. Number two, of course, is the fact that the stock markets actually, generally, the valuations have come down. There has been a feeling that the Indian stock market is highly overvalued.
1: Right.
0: And that, over the last year or so, there has been, a bearish trends have been continuing, valuations have been coming down. So I think there probably is a feeling now that it has reached the right level. Thirdly, of course, is the rupee, because although the rupee, we have talked about the fact that it is, constantly depreciating, there's always been a lot of concern, but there is, there again has been a feeling that the rupee needs to reach its right valuation. And of course, there's a lot of concern over rupee, but you and I both know that countries like China actually depreciate their yuan to gain benefits, and that's one of the reasons for the friction between the US and China. So I think the fact that the rupee also has come down, come to more realistic levels, all these, the combination of these three factors, I think.
1: Right. You talked of valuations. Sushma, do you really think that the Indian market's valuation has really moderated as of now?
0: Well, to some extent.
1: To some extent.
0: I won't say, moderated completely, but to some extent, comparatively.
1: There have been reports, that it's quite heated up, even now.
0: Yes, correct.
2: सुषमा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट का रुख हमें देखने वाला, जबकि लार्ज कैप में बढ़त का रुख देखने वाला, तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चिंता का विषय हो सकता है या इसे एक सर्टेन ऐसी ही नॉर्मल चीज मान करके रखा जाए?
0: देखिए, इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए जो उसका, जहाँ वो इन्वेस्ट करे, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उस कंपनी की जो वायबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको वो देखना चाहिए और उस हिसाब से उसको देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो देखना चाहिए इन्वेस्टर को, क्योंकि कभी कभार एक कंपनी जो है, आप स्टॉक मार्केट्स में देखें, इतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. तो मेरे ख्याल ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ज़्यादा देखना चाहिए इन्वेस्टर को.
2: और आगे बढ़ते हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में 11.4 अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर 740.8 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 9.3 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 600.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है. वहीं सोने का भंडार 2.1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 116.4 अरब अमरीकी डॉलर हो गया. हालांकि विशिष्ट आहरण अधिकार 430 करोड़ डॉलर से घटकर 18.8 अरब अमरीकी डॉलर रह गए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास देश की रिजर्व स्थिति 11 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 4.9 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है. सुषमा, ये जो आंकड़े हैं हमारे लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर के आते हैं. भविष्य की बात अगर ना करते हुए प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि हालात चल रहे वैश्विक स्तर पर, हमारी अर्थव्यवस्था इन आंकड़ों के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है?
0: बिल्कुल खड़ी नजर आती है. ये अभी मैंने FCNRB की बात की, तो 136 बिलियन डॉलर आ गए हैं. तो ये जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका हमारा बहुत बढ़ गया है इसके आने से. और खैर, सोने का जो रिजर्व है, मेरे ख्याल उसकी वैल्यूएशन से ही, क्योंकि

0: this suddenly fell to about $70, $75 Brent crude. But now when it is clear, then of course there are hostilities continuing between Iran and the US, and there is constant friction over the vessels passing, merchant vessels passing through the Strait of Hormuz.
1: Yes.
0: Brent crude has gone up to $95. And $95 is not a price that is sustainable for a country like ours.
2: और श्रोताओं को बता दें, भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 0.6% बढ़कर 1,54,884 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 1.2% ऊपर आकर 2,35,456 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। सोशना जी, बहुत ही कम शब्दों में सोने की बढ़ती कीमतों पर आपके क्या विचार होंगे?
0: देखिए, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रहेंगी, सोने के दाम बढ़ते रहेंगे और चांदी के भी, क्योंकि ये सेफ हेवन एसेट माने जाते हैं। जब कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्राइसिस हो, तो लोग सोना ही खरीदते हैं।
2: सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो वेरी मच सुषमा जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रिबाउंड, सेंसेक्स एड्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 23,900, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर $740 बिलियन लास्ट वीक, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
6: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य

के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते को मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे
5: And recovery efforts in the country.
4: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218 नवलपरासी पश्चिम में 208 नुवाकोट में 185 रसुआ में 140 गोरखा में 72 धाडिंग में 60 और तनहु में 38 लोगों की मृत्यु हुई काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा अंतरिक्ष स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण

0: ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देशभर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देशभर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल, चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ভালোবেসে যেমন ডেকে দেখতে হয়, তেমন বাংলা সাহিত্যকেও ভালোবেসে পড়তে হয়। তবেই রাজশেখরকে জানা যায়, জানা যায় কিভাবে পরশুরামের কলমই কুঠার হয়ে ওঠে। আর সেই কলমের সন্ধান করছি কল্পলাল আর মনীষা, সঙ্গে আছেন আপনিও ফোনে, এসএমএসে, হোয়াটসঅ্যাপে। কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে এখন একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনী বিরতি।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और केरल में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषि जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंड्रोस स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Discussions were held on strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. The External Affairs Ministry said that 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighbouring nation. Briefing media in New Delhi, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal said, 275 Indian nationals remain missing. Mr. Jaiswal said, 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. The spokesperson said, India will continue to provide assistance as per the requirements of

0: अंधेर प्रदीप ना देले जे सुखे निद्रा दाय
1: आवर मेमोरीज का एग्जैक्टली
2: কি হলো গো গোল কিসের? আরে বাদারে ভাই,